अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे

0: कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

हे सुनने वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

एक बार माँ पार्वती लक्ष्मी जी के घर जाती हैं और वहां देखती हैं कि लक्ष्मी जी के पास बहुत सुंदर महल है। उनके मन में भी आता है कि मैं भी अपने भोलेनाथ से कहकर उनसे भी सुंदर महल बनवाऊंगी। पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं कि स्वामी, मेरे लिए भी एक सुंदर सा महल बनवा दो, मैंने लक्ष्मी जी को नीचा दिखाना है। भोलेनाथ समझ जाते हैं, कहते हैं हम तो सन्यासी हैं, हमारा महलों से क्या काम। लेकिन पार्वती जिद करती हैं और उनके जिद पर एक सोने का सुंदर सा महल भोले बाबा बनाते हैं। पार्वती के गृह प्रवेश पर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया जाता है, यज्ञ करवाया जाता है। उसी यज्ञ में रावण के पिता ऋषि विश्वा भी अपने पुत्र रावण को लेकर यज्ञ में आते हैं और यज्ञ पूर्ण करवाते हैं। पार्वती जी खुश होकर दक्षिणा मांगने को कहती हैं। इस पर रावण दक्षिणा में वही महल मांग लेते हैं और भोले बाबा उनको वही महल दे देते हैं। पार्वती बड़ी दुखी होती हैं। भोले बाबा के समझाने पर फिर दोनों कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। तो भक्तों, ऐसे ओघड़दानी हैं हमारे भोले बाबा। आइए उनका ये

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। मार्सन से परिवार, हरि प्रसाद धुन महेश, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तंत अख्तियार औत श्रीमान हरि प्रसाद धुन महेश का बड़ा भाई शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरिनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। मार्सन से परिवार, हरि प्रसाद धुन महेश, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तंत अख्तियार औत श्रीमान हरि प्रसाद धुन महेश का बड़ा भाई शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक। इतवार सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिन्स द खानस्तांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार महेश के दुख में शामिल है।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

किसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना,

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

तेरे झूठे कसमें वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुनने वालों, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। मार्सन से परिवार, हरि प्रसाद धुन महेश, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरि प्रसाद धुन महेश का बड़ा भाई शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सुरिनाम इलाका सारामा का के पैदा इसी था। मार्सन से परिवार, हरि प्रसाद धुन महेश, बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान हरि प्रसाद धुन महेश का बड़ा भाई शशि महेश, अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर, सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक। इतवार सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओकमेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्ट डोरप में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिन्स द खानस्तान द हालफ द्री किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमाटोरियम ओकमेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्ट डोरप में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार महेश के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टरडम से विधवा हिल्दा सुखराज महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुधवार की रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत विधवा हिल्दा सुखराज महेश का बड़ा भाई स्वर्गीय श्री जय मंगल सुखराज का सार, 6 लड़कन के मामा, 3 पतो, 3 दामाद के ममुमा ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम में और सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। अम्स्टरडम से विधवा हिल्दा सुखराज महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत विधवा हिल्दा सुखराज महेश का बड़ा भाई स्वर्गीय श्री जय मंगल सुखराज का सार, 6 लड़कन के मामा, 3 पतो, 3 दामाद के ममोमा ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका यह आज इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिन्स दखांस्तांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार अम्स्टर्डम से परिवार महेश मंगोन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमती हर्मिना महेश का बड़ा भाई श्रीमान राजन मंगोन का सार रेमोंड यानी और रिकार्डो के मामू डेमियन के आजा अंजेलिना का नाना अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। अम्स्टर्डम से परिवार महेश मंगोन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमती हर्मिना महेश का बड़ा भाई श्रीमान राजन मंगोन का सार रेमोंड यानी और रिकार्डो के मामू डेमियन के आजा अंजेलिना का नाना अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक इतवार सेंट्रम वेस्टगार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे दिनसदक आंस्टांड 2:30 किए जाएंगे वेस्टगार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ।

और मृत्यु समाचार सुनिए बथुफदौरव से। परिवार आंद्रे महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान आंद्रे महेश का बड़ा भाई, श्रीमती कार्ला महेश का बड़कू, रीमी और जेमी के दादा, दर्शना और अहिल्या के ददवा ससुर, पांच लड़कन के आजा, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है और जो कि सूरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। बथुफदौरव से परिवार आंद्रे महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान आंद्रे महेश का बड़ा भाई, श्रीमती कार्ला महेश का बड़कू, रेमी और जेमी के दादा, दर्शना और अहिल्या के ददवा ससुर और पांच लड़कन के आजा, अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज दिन में 1 बजे से 2 बजे तक एटफर्ड सेंट्रम वेस्टगार्ड के मुर्दालय ओकमेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देंस द खानस्तांद हाल्फ द्री किए जाएंगे वेस्टगार्ड क्रीमेटोरियम ओकमेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में सुनिए, होफदोर्फ से रिधि महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत रिधि महेश का बड़ा भाई नैन्सी महेश बंगोत का बड़कू अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम में और सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। होफदोर्फ से रिधि महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत रिधि महेश का बड़ा भाई नैन्सी महेश बंगोत का बड़कू अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक स्ट्रक्स फन 1 uur tot 2 uur इतवार सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे दिन्स दखांस्तांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्ट फुरजोर्खिंग समस्त परिवार महेश और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: तेरा था।
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार आप सुनिए। निवखेन के रहने वाले समस्त परिवार घेसे शिव गोविंद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल के आयु में नीखरन फैफ्तखियार और मां विधवा सुभद्रा शिव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घेसे के बेटा श्रीमती इरेन शिवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहरिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयकर रामजू के सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना निवखेन का रहने वाला श्रीमान बीरजानंद घेसे की मृत्यु निवखेन के अंतोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। इन्हें लोग बिरजू के नाम से पहचानते और पुकारते थे। निवखेन से परिवार घिसे शिव गोविंद बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 59 साल की आयु में नीखरन फैफ्तखियार औत मां विधवा सुभद्रा शिव गोविंद और स्वर्गीय पिता श्री साधु घिसे के बेटा श्रीमती इरेन शिवरतन का जीवन साथी अनिल सुनील रत्ना और मैत्री के भाई जैन जहरिया और शारदा साधु के देवर देवराज महावीर और बॉयकर रामजू के सार सभी लड़कन के पिता मामू काका आजा और नाना निवखेन का रहने वाला श्रीमान बीरजानंद घेसाए की मृत्यु निवखेन के सेंट अंतोनियस हॉस्पिटल में हो गई है। इन्हें लोग बिरजू के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले मंगलवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक दिस दखाफन फन जीफन तोत अख्तूर उत्फर्ट सेंट्रम दालवेक उत्फर्ट सेंट्रम क्रीमाटोरियम दालवेक के मुर्दालय फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 यूट्रेक्ट ओवरवेक्ट में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 10:30 बजे वोंसडाग ओक्टेंट 11:30 किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम दालवेक फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 यूट्रेक्ट ओवरवेक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उत्फार्थ फुरजोरखिंग समस्त परिवार घिसे और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार सुनिए। हार्लेम के रहने वाले परिवार सुभाष गोली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 79 साल की आयु में निखनन जीवंत खियार औत श्रीमान सुभाष गोली की मौसी श्रीमती रेशमा सुरुजबली की मौसिया सास अश्विन और अरविंद के आजी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धू की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खस्थाउस जोइत में हो गई है। बिया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। हार्लेम से परिवार सुभाष गोली बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 79 साल की आयु में निखनन जीवंत खियार औत श्रीमान सुभाष गोली की मौसी श्रीमती रेशमा सुरुजबली की मौसिया सास अश्विन और अरविंद के आजी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धो की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खस्थाउस जोइत में हो गई है। इन्हें लोग जीवित में बेया के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका है। आने वाले सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफर्ड सेंट्रम वेस्ट हार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया ये आने वाले बुध को किए जाएंगे दिन में 5 बजे से वोंसडाग मिडाग वनाफ 5 uur वेस्टगार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फ्रजोरखिंग समस्त परिवार सुधवा परिवार बुद्धू और परिवार गोली और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

99 से आप सुने सुपर हिट सॉन्ग तेरी अखिया का जो काजल मुझे तरपावे मॉय उजाला रेडियो पर आप सुने हैं इस गीत को एंड न्यू मरहूम नदीम खान जी

दो घड़ी। अभी आप गीत को सुने मरहूम नदीम खान साहब की आवाज में उजाला रेडियो पर। और अब किरण केदार। मैं दिल था अकेला अकेला।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। आज इतवार का शाम का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज इतवार 26 तारीख जुलाई का प्रोग्राम सोंदा ससन त्विंत हिल्ली। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो इनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्त के लिए। और यहां से आप लोग सुनने को जा रहे प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। अब से लेकर शाम में 5 बजे तक आप लोग सुनेंगे वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा।

इतवार का शाम का प्रोग्राम, मैं हूं सुभाष सिंह गोविंद, और जहां तक आप लोग हमें सुनते होंगे, आप सुनते ही जाइए शाम में 5 बजे तक। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 020-363-0808 पर 020-363-0808 पर।

प्यार से हमने उसे सजाया, और इस तरह से ये बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, और खास करके स्वर्गीय देसी रघु सिंह जी के आवास में ये बैठक गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

वेल यार डमा डोलवा के चोखा वेल हम न जान ली कौन ची बात डमा डोलवा के चोखा मजोन ची होई भी साल होई एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा अलमेरे शहर में देखा

हाईमोंट एन शिवम के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो चलिए प्रोग्राम में खजड़ी हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। और हम सोच लो कि गनवा तो के भी मोई लगी बांधते को गाना हैगा, ये गनवा भी चाहिए जाने के और सुने के। सुरेन महाबली जी

और इस तरह से शानदार सा खजड़ी जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने सुरेश महाबली के आवाज में, ढोल पर अशोक मंसराम एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग के लिए ला रहे हैं एक और ऐसा ही बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और इस बार गाने वाले होंगे और देखा जाए द किंग ऑफ बैठक गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी।

शाबाश शाबाश बार बार बगिया में कोयल न बोले, इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं। एंड अब की बार देखा जाए बेल्किशर में सुनीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने और इस गाने को मांग के है

0: तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। और इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। वेल, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला है और खास करके हरि प्रसाद शिव नंदन जी।
1: जानी मेरे दिल की कहानी सुन दिल भर
0: और मेरे में तो नहीं, इस भी प्रोग्राम को

शाबाश शाबाश, सुनो दिल भर जानी मेरे दिल की कहानी। और स्वर्गीय हरि प्रसाद शिव नंदन जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, सुरनाम पारमारी बहु में स्टेफी पारख भी प्रोग्राम को बैठकर सुने है, तो ये गाना तुम्हारे नाम स्वर्गीय पंडित हरि शिव बालक जी

0: शाबाश शाबाश। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और खास करके स्वर्गीय पंडित हरी शिव बालक जी के आवाज में
1: दिल की कहानी।
0: एंड चलिए अब की बार तो एक बार फिर हरि प्रसाद सिंह नंदन जी के आवाज में, और इस गाना को मांग करने वाले हरलम में सीता के लिए गाना पेश है।

शाबाश शाबाश, सुनो सुनो मेरे दिल भर जानी मेरे दिल की कहानी यार। आई बॉय यू आर उजाला रेडियो, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा।

आई बॉय आओ आओ हमारे डार्लिंग आओ, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने यार, कितना मोई कितना विशाल गाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, एगो बात है गा, और ढेर मिला चीज पूछे बोले कि जब कल्हिया तो खाई बने ले, चाहे जोची बने, डोक्सा बने ले या मुर्गा बने ले या लम्स बने ले, माँ बोले जब बाजा है तो बोले ओके पचौनी बोले तो पचौनी बोले ऐसे लेकर नत्युलक डोक्सा लम्स ये सब चीज बिहान खाइए तो और मोई और स्वादिष्ट नत्युलक लेकर लगे वहां एकदम से ट्रैक हो जाए। मैं सब बोलो कोई रेस्त, हम रेस्त कभी ना बोलिए, रेस्त जाने कौन चाहिए, रेस्त जो तो प्लेटिन बचे। आई बो चीजवा चाहता बोले के वन ढेर मिला बोले कान में रेस्त जो है बोले ऊ पचौनी बोले पचौनी जो बा यार पचौनी जो तोर कढ़ैया में बचल है ऊ सब गान ऊ सब खाई और लेकर लगे नत्युलक विशाल। तो चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और ये खास करके ये सुंदर सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, गाने वाले होंगे देखा जाए स्वर्गीय रामदेव चैतू जी, और इस गाना को मांग करने वाली है एमी फैंस पोल्डर में बैठ करके प्रोग्राम को सुने हैं। तो ये गाना तुम्हारे नाम

वल शाबाश शाबाश तकदीर, इन दिनों मेरी ऐसी बदल गई, क्या बात है यार। और इतना वेल, इतना सब चीज हम जाने लो कि हर इतवार के घर के काम हो गए हैं, कहीं पे सब घर के काम हो गए हैं, कपड़ा तिरकी हो गए, कपड़ा धोवाई हो गए हैं, जो भी आप करते होंगे यार प्यार से करिए। अगर आप पकाओ तो ये मोई से पकाइए, और जब नाचे छो ये तो खूब ठीक से नाच।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा दूसरा भाग और आखिरी भाग यार। करीबन 10 मिनट वाइज हो चुके, 4:03 नौ फुट फिर खुद मेरा खलमा। मैं हूं सुभाष और जहां तक आप लोग हमको सुनते होंगे, सुनते ही जाइए शाम में 5 बजे तक। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 3 3 9 8 9 8 पर। चलिए अब की बार तंत आनी भी बैठ कर सुने और मांगे हैं नाचे नाचे तो नाच ले। मोती माला।

शाबाश शाबाश बोल भुजनियन के भुजनियन लावा भुजे। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और जिस तरह से हम आप लोग से बता चुके कि सब कोई घर के काम करे है, सब कोई घर के काम करे, कोई कुकरू सफा करे, कोई अपन बदकामर सफा करे, कोई सॉफ्ट सॉफ्ट करे है, कोई पकावे है और कोई चुपचाप बैठल बा। तो चलिए लाइफ इन शहर में सानू जी भी प्रोग्राम को बड़ी सुने हैं।

शाबाश शाबाश मैं भौरा तू है पुल और ये जवानी लौट के आवे ना, मैं ये तेरा और तू मेरी। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने रविंद्र सिंह एंड सविता सिंह के आवाज में एंड यू आर उजाला रेडियो। आई बॉय चलंदे अलमेरे में माला भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। आओ हम सुना हम सही तो उसमें हमारे मामी

आप लोग बैठ करके भोजन करते होंगे तो स्वादिष्ट भोजन कीजिए और सुनो एक बहन एक चश्मा कल आई बॉय चलन

गोरिया रे चुमकन बाजे रे ऐन डमाडोल चटनी कोंची बा डमाडोल चटनी कोंची बा कैसे ओके बनाओ जा डमाडोल चटनी वेल हम ना जाने लो साढ़े चार का वक्त है हाल फैज एंड वातरिंगन में श्रीमान राजन खुन खुन जी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं और खिड़कियां मसे ताके हैं

खिड़की खोली रही सारी रतिया, बोले रतिया तू कहां गवा दे ले। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। एंड चलिए बरेडा शहर में श्रीमान और श्रीमती बिहारी

0: शाबाश शाबाश हो प्रीतम प्यारे, तू कहाँ बस तू है मोहे नगरिया बताया। एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे
1: घूमत बात
0: हो दौरप शहर में आनंद मंगरू प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं
1: गलिया के
0: और देखा जय नरेश एंड चांद भी प्रोग्राम को सुने हैं बैठ करके।

शाबाश शाबाश। इस तरह से सत्यानंद रेखा जी की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, 20 मिनट बाकी रहा 5 बजे में, तुरंत खमनितन 4:05। एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और खासकर के ललता प्रसाद पूरन की आवाज में गाना पेश है लक्ष्मी के लिए।

शाबाश शाबाश, जब से दिखली सूरतिया तो हार गोरिया। और मेरे शहर में देखा जाए भाई मनोज मुंगार भी प्रोग्राम को बरकर सुने हैं।

शाबाश शाबाश मोर मन लागा, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों। एंड चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, और देखा जाए तो ना मानो मिक्स आप लोग सुनेंगे कृष्ण छेदी के आवाज में।

आई बोई चलंदे चलंदे चादर बिछाओ बलमा, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालों, देखा जाए घड़ी तरफ से करीबन करीबन 5 या 7 मिनट बाकी है 5 बजने में, और बैठे गाना का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम एंड सुनीता भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं।

0: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे अब हम क्या देखे। लता जी एंड किशोर कुमार, फिल्म कभी कभी का गीत आप सुने।
1: मेरी जान
0: ठहरो मेरी जान, एक बार फिर किशोर कुमार एंड लता जी।

वादा करो कि जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ, आ गले लग जा फिल्म का नाम, और गाने वाले किशोर कुमार एंड लता जी, उजाला रेडियो का प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आपके लिए। तो अगला गीत सुनिए।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
3: The rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujala Radio ka paigham hai. Main hoon Shahid Gulzar. Namaskar. Assalam Walekum.

0: यूं जी मुझे पहचाना ओहो नहीं पहचाना। शुरू का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज, सन 1961 का फिल्म बॉयफ्रेंड।
1: नहीं पहचाना क्यों जी मुझे पहचाना ओहो नहीं पहचाना।
0: मिले जुले संगीत आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हम आपकी खिदमत में हाजिर स्टूडियो में एमस्टरडम से ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं और मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स हम आपको आज का पैगाम में सुनाने वाले हैं। यू आर का पैगाम है, लीजिए अर्ज है, फिल्म का नाम नमस्ते इंग्लैंड।

जिंदा हूँ मैं तेरे लिए, हर पल रहूँ मैं सिर्फ तेरे लिए। सिलेक्शन पेश की गई है आकांक्षा भंडारी और आतिफ असलम की आवाज़ फिल्म का नाम नमस्ते इंग्लैंड।

0: Jala Radio. Radio. Tu jaane hai, toh, toh.
1: मेरा दिल भी कितना पागल है, पागल साला दिल। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये कमबख्त प्यार तो तुम ही से करता है। आइए एक रिमिक्स वर्जन हम आपको सुना रहे हैं। स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो, तू जाने है तो।

My heart goes crazy for you, girl. मेरा दिल भी कितना पागल है, ओ साजन मेरे साजन। The Rocking You Are उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। इस बार आइए सुनते हैं फिल्म का नाम सुई धागा, मेड इन इंडिया। रुंकिनी गुप्ता और पापों की आवाज, पापा नहीं है पापों क्या नाम

बेहतरीन सिलेक्शन आपके मध्य में प्रस्तुत किए गए है। तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा, फिल्म का नाम सुई धागा, मेड इन इंडिया। आपको मालूम है ना कि सुई धागा क्या होता है? सुई इज अ नाउट और धागा दट संहार। देखिए कोनों के भोंक ना दिए। आइए पायल देव और बादशाह की आवाज एक बार फिर से फिल्म नमस्ते इंग्लैंड से हम आपको सुनाने वाले हैं। भरे बाजार फोन का नंबर आप नोट कर लेना, स्टूडियो का यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर, यूआर के एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर आप नोट कर लेना हर कामकाज के वास्ते। 024-09-08-07 पर आप डायल कर सकते हैं। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के लिए जैसे इश्तहार, जरूरी खबरें, फरमाइश, मृत्यु समाचार, मौत की खबर या जो भी कार्य के लिए 024-09-08-07 इट्स यूआर।

0: सुनते रहना, सुनते ही जाना प्रोग्राम को, हम आपको और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are. You are. You are.
1: The most sensational and
2: the best. The
3: best.
0: लीजिए प्रोग्राम में एक रोमानी हिंदी मैशअप। इसका मतलब है कि एक मिक्स सॉन्ग आप सुनेंगे। लीजिए आप मुलाहिजा फरमाइए उजाला रेडियो के पैगाम से।

मैंने द क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज के प्यार का तो बदला प्यार से उतारो। जबकि पुराने गाने के बातें हुई है तो मुझे एक और गाना याद आ गया। इस बार एक वेरी ओल्ड सॉन्ग है और गाने वाली है सुरैया कि तेरे नैनों ने जादू किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, कुछ इस तरह सा सिलेक्शन है। आइए सुनते हैं सुरैया की आवाज, तेरे नैनों ने जादू किया।

देख रहे कितना बड़का झूठ हम बोल ली कि नैनो ने जादू किया। जब नैनो जादू करेगा तब हिप्नोटिस शेर हो जाइए ना। तेरे नैनो ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया।

हमारे अजीज सुनने वालों को खुश करने के लिए आपके मनोरंजन के वास्ते मिले जुले संगीत हम पेश कर रहे हैं। मैं हूं शहीद गुलजार, ये है स्टेशन यू आर उजाला रेडियो। हॉलैंड से वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, आप जहां से भी जिस तरह से हमें सुन रहे हैं, दे या बे प्लस इंटरनेट या ऐप के जरिए या जहां

तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 एंड जोंदा 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में। Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से परिवार महेश भैरव सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त ख्यार औत श्रीमती फ्रीद महेश भैरव सिंह का पति, दो लड़कन चित्रा और आनंद महेश के पिता, श्रीमान शांति गयाधर का ससुर, दो लड़कन के नाना, दो पतों के ननवा ससुर, तीन लड़कन के पड़नाना और दो लड़कन के आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम में, सुरीनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था। अम्स्टरडम से परिवार महेश भैरव सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमती फ्रीद महेश भैरव सिंह का पति, लड़कन चित्रा और आनंद महेश के पिता, श्रीमान शांति गयाधर का ससुर, दो लड़कन के नाना, दो पतों के ननवा ससुर, तीन लड़कन के परनाना और दो लड़कन के आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे देश दखास्तान हालफ दरी किए जाएंगे। वेस्ट खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवैक 275/257 तक अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और मृत्यु समाचार मार्सन के रहने वाले परिवार हरिप्रसाद धून महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान हरिप्रसाद धून महेश का बड़ा भाई लड़कन शशि महेश अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है और सुरिनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी जो था मार्सन से श्रीमान हरिप्रसाद धून महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल की आयु में अख्तन तख्त खियार औत श्रीमान हरिप्रसाद धून महेश का बड़ा भाई लड़कन शशि महेश अमरनाथ महेश और शारदा महेश के दादा शर्मिला और हंस के ददवा ससुर सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देंसदाख आंस्टांद हाल्फ द्री किए जाएंगे वेस्खार्द क्रिमेटोरियम अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में।

0: मेरा था।
1: और मृत्यु समाचार, अम्स्टर्डम से विधवा हिल्डा सुखराज महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत विधवा हिल्डा सुखराज महेश का बड़ा भाई स्वर्गीय श्री जय मंगल सुखराज का सार, 6 लड़कन के मामा, 3 पतो, 3 दामाद के ममुआ ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अम्स्टर्डम में सुरिनाम इलाका सारामाका के पैदाइशी था। अम्स्टर्डम से विधवा हिल्डा सुखराज महेश और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत विधवा हिल्डा सुखराज महेश का बड़ा भाई स्वर्गीय श्री जय मंगल सुखराज का सार, 6 लड़कन के मामा, 3 पतो, 3 दामाद के ममवा ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे देश दख आंस्टांड हल्फ द्री किए जाएंगे। वेस्खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम उस दौरप में।

0: हुआ।
1: और मृत्यु समाचार आप प्रोग्राम में सुनिए। अम्स्टरडाम से समस्त परिवार दुखी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार लड़कन अशोक उषा जेरल्ड क्सीन सुनीता एल्स और रोमियो के मामा तीन दामा दो पतों के ममवा ससुर चार लड़कन के आजा 11 लड़कन के नाना और 4 लड़कन के परनाना और पर आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। सूरीनाम इलाका सरमाका के पैदाइशी था। अम्स्टरडम से परिवार दुखी महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध की रात में 88 साल के आयु में अख्तंत अख्तियार औत श्रीमती शर्मा दुखी महेश का बड़ा भाई श्रीमान राम दुखी का सार लड़कन अशोक उषा जेरल्ड सीन सुनीता एल्स और रोमियो के मामा तीन दामाद दो पतों के ममवा ससुर 4 लड़कन के आजा 11 लड़कन के नाना और 4 लड़कन के परनाना और पर आजा। अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश के मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार मंगलवार को किए जाएंगे दिन में 2:30 बजे। दिस द खास टाइम द हाल्फ द्री वेस्कार द क्रीमाटोरियम ओकमेरवेख अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में।

और मृत्यु समाचार सुनिए ज्वानेनबर्ग से। योहान महेश और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार ओत श्रीमान योहान महेश का बड़ा भाई, श्रीमती सीला महेश का बड़कू मिक रायन और ऋषि के दादा विनोद, दियाना और मार्लिन के ददवा ससुर जीना और राफेल के नाना जेलानो, चिनाया और जेफानो के आजा, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। ज्वानेनबर्ग से परिवार योहान महेश बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त यार औत श्रीमान योहान महेश का बड़ा भाई, श्रीमती सीला महेश का बड़कू मिक रायन और ऋषि के दादा विनोद, दियाना और मार्लिन के ददवा ससुर जीना और राफेल के नाना जिलानो, चिनाया और जेफानो के आजा, अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 2:30 बजे देंसदाख आंस्टांद हालफ द्री किए जाएंगे वेस्टगार्ड क्रिमेटोरियम अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टरडम से शांति महेश और अश्विन रामबरन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत शांति महेश का बड़ा भाई अश्विन रामबरन का मामा अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अम्स्टरडम से शांति महेश और बेटा अश्विन रामबरन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बुध के रात में 88 साल के आयु में अख्तन तख्त खियार औत शांति महेश का बड़ा भाई अश्विन रामबरन का मामा अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान नंदराज महेश की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 2:30 बजे दिनस्थान स्थान्द हालफद्री किए जाएंगे। वेस्कार्ड क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार्ड फुरजोरखिंग समस्त परिवार महेश और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

एक और मृत्यु समाचार उजाला रेडियो का प्रोग्राम में आप सुनिए। हार्लेम से परिवार बुद्धू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 79 साल की आयु में नेखन जीफन तक यार औत श्रीमान रॉबी बुद्धू की बहन श्रीमती लीना बुद्धू रामसुख की ननद माइकल और सरिता की फुआ गीता और विकास मिश्रीलाल की फुआ सास देवांशी और दिया के नानी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धू की मृत्यु हार्लेम के स्पार्न खास्टहाउस जैत में हो गई है। इन्हें लोग बेया के नाम से पहचानते और पुकारते थे। हार्लेम से परिवार रॉबी बुद्धू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 79 साल की आयु में नेखन जीवन तक यार औत श्रीमान रॉबी बुद्धू की बहन श्रीमती लीना बुद्धू रामसुख की ननद माइकल और सरिता की फुआ गीता और विकास मिश्रीलाल की फुआ सास देवांशी और दिया की नानी हार्लेम की रहने वाली विधवा गोमती सुधवा बुद्धू की मृत्यु हो गई है हार्लेम के स्पार्न खास्टहाउस ज़ैत में। अर्थी से विदाई लेने की मौका है कल सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक ऐतफर सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के शाम 5 बजे वोंसडाग मिडाग फना फेफ्यूर किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार बुद्धू और परिवार सुधवा और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: गई चुल।
1: बुढ़ापे में मजा क्या आएगा दिल लेने देने के लिए, जो देना है तो अभी दे दो, जो लेना है तो अभी ले लो। तो क्या

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: और प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया का दूसरा भाग यहीं से आप सुनेंगे।
1: काफी है।
0: उजाला रेडियो पर बनाया जा रहा है हर एक इतवार की रात 9 और 11 के बीच।

गुलाम अली की आवाज उजाला रेडियो गीत और गजल की दुनिया प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना है आपको, कुछ बताना है हमें आपको, तो ईमेल के जरिए हो सकता है। पता है info@ujala.nl, info@ujala.nl।

की याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। आबिदा परवीन की आवाज में आप सुने। पंकज उधास।

गमी दुनिया, गमी दुनिया हमें भी गमों में शामिल कर ले। मेहदी हसन की आवाज़ में आप इस सुंदर गज़ल को सुने। उजाला रेडियो का प्रोग्राम है गीत और गज़ल की दुनिया। पंकज उधास जी एक बार फिर हिस्सा ले रहा है।

झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। पंकज उदास की आवाज, गीत और गजल की दुनिया प्रोग्राम का नाम है। आपकी खातिर, हाँ आपकी खातिर बनाया जा रहा है, और हम तो खुश नसीब है कि आप सुन रहे हैं।

जब भी फूल खिले गुलशन में तेरी मिलन की याद आई, अशोक खोसला की आवाज में आप गीत को सुने, गजल को सुने। दोबारा गुलाम अली हिस्सा ले रहा है आज का प्रोग्राम में। और आज गीत और गजल की दुनिया में आखिरी गजल को आप सुनेंगे। इसी के साथ अभी हम रुखसत हो जाएंगे, फिर मिलेंगे आने वाले हफ्ता में। तब तक हमारा इंतजार कर लेना, यहीं पर फिर मिलते हैं।

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो

ये उजाला रेडियो है और यहीं से आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। और आप जो सुन रहे हैं हमारी खुश नसीबी है, तो चलिए इस प्रोग्राम में पहली गजल जो आप सुनेंगे तो पेश है गुलाम अली की आवाज में।

रो रो के मुझको रुलाना याद है, चुपके चुपके आंसू बहाना याद है। गुलाम अली की आवाज, उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, जिस प्रोग्राम में बातें हम कम करते हैं और आपको गीतों और गजलें सुनाते हैं। और अगला या तो अगली गजल जो आप सुनेंगे, तो अब पेश है पंकज उदास की आवाज़ में।

सहल यूं राहें जिंदगी की है, हर कदम हमने आशिकी की है। पंकज उदास की आवाज में सुंदर गजल को आप अभी सुनें।

ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। गुलाम अली की आवाज में आप सुने प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया उजाला रेडियो पर। मैं आपका दोस्त विजय।

तेरी हर चाप से, यानी हवा के झोंके से कोई पत्ता हिलाया, पत्ता हिल गया, आठ आठ को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चरागीनी खुशी कि शायद महबूब आ गया वो।

जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। मेहदी हसन के एक लाइव रिकॉर्डिंग अभी आप सुने प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में। कुंदन लाल साइगल जी हिस्सा ले रहा है।

अब हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। केएल यानी कि कुंदनलाल सहगल की आवाज में आप सुनिए। आप भी, हाँ आप भी हमारा प्रोग्राम को सुन रहे हो, ये तो हमारी खुश नसीबी है। शुक्रिया।

कैसे तेरे बगैर गुजारी तमाम रात, आंखें तो थक गई थी मगर दिल नहीं थका। अशोक खोसला और सुमिता चक्रवर्ती से आप सुने गीत और गजल की दुनिया उजाला रेडियो पर।

0: झील में चांद नजर आए, पंकज उदास की आवाज में आप सुने। और जैसे रात के बाद दिन आता है और दुख के बाद सुख, वैसे अंधेरा के बाद उजाला। उजाला रेडियो,
1: तुम्हारी जुल्फ।
0: प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया का इस भाग, पहला भाग में एक आखिरी गजल, दूसरा भाग भी अभी जरूर सुन लेना।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़ के, शोला जो भड़ के, पहलू में बेफरार दिल, बेफरार दिल।